104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरूको लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान में 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिंखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को अब को प्रस्तुति कार्यक्रम वंदना। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, नेपालको पहिलो आईएसओ सर्टिफाइड अगरबत्ती कंपनी।
2: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
3: नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम वन्दनामा। कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको प्रायोजना रहेको यो प्रस्तुतिमा प्रस्तुता म युवेन्द्र अबको करिब एक घण्टा यहाँसँग केही सुमधुर भजनका साथमा रहनेछु।

ने श्री जी के चरणों की महिमा गाई है और महिमा वही गा सकता है जिसने उन श्री चरण कमलों का दर्शन किया हो। इन रसिकाचार्यों ने निज बपू से प्रियालाल के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। अगर इन रसिकाचार्यों ने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन ना किया होता तो संसार में प्रिया प्रीतम की ये महिमा ही प्रकट ना होती। हम लोगों की पहचान, हम लोग राधा नाम संकीर्तन करते हैं, श्री वृंदावन से प्रेम करते हैं, तो संसार कहीं ना कहीं इस बात को ही अनुभव में लाता है कि ये राधा नाम संकीर्तन करने वाले, श्री वृंदावन जाने वाले, वृंदावन से प्रेम करने वाले, श्री बिहारी जी से प्रेम करने वाले, ये सब श्री जी के हैं। हम सब श्री जी के ही हैं, कोई संदेह नहीं है, किंतु हम सब श्री जी के बने कैसे? कैसे बने जी? केवल राधा नाम गाने से हम श्री जी के बन गए? ये कहीं तक हमको नहीं समझ में आता। श्री जी के हम तब बने जब श्री जी के किसी निज परिकर ने हम पर कृपा करी, चाहे वो सदगुरु के रूप में हो, आचार्य रूप में हो, रसिक जनों के रूप में हो। क्योंकि चार वस्तुएं, नाम, रूप, लीला और धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री बरसाना धाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी, सर्वप्रथम सोपान आता है नाम का, और नाम किसी ना किसी से तो सुना ही जाता है। जब तक नाम को श्रवण नहीं किया तब तक नाम में रुचि नहीं हुई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति ही श्रवण भक्ति है। तो सर्वप्रथम नाम से प्रेम होगा, और नाम से प्रेम तो कोई नाम से प्रेम करने वाला ही करा सकता है। ये गुरुजन ही करा सकते हैं, ये आचार्य जन ही करा सकते हैं, ये रसिक जन ही करा सकते हैं। जब नाम में आनंद आने लगे, नाम में रस आने लगे, तब जीव का मन आकर्षित होता है कि जिसका नाम सुनकर के इतना आनंद आता है वो दिखता कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, हो वो कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम की कृपा से रूप में आसक्ति बनी, फिर नेत्रों में प्यास जगती है कि एक बार तो निहार ले। अब निहारे कैसे, उसका पता कौन बताए? उसका पता भी हम स्वयं नहीं खोज सकते। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने भी वो उसे पा गए। हमें आपको तो सब विरासत में वस्तु प्राप्त हो गई, वस्तुतः ये मेहनत, ये परिश्रम, ये साधना तो हमारे गुरुजनों की है, जिन्होंने कृपा करके सहज हमें प्राप्त कराया। नाम में रुचि हुई तो मन ने कहा कि जिसका नाम इतना प्यारा है वो दिखता कितना सुंदर होगा, उस रूप की ओर मन आकर्षित होने लगा। बस देख लो, एक झलक देख लो। और यदा कदा साक्षात ना सही, किसी छवि के माध्यम से, किसी स्वरूप के माध्यम से, अथवा तो किसी कथा रस सार के माध्यम से उस स्वरूप का वर्णन सुन लिया, तो फिर मन होता है कि जिसका नाम इतना सुंदर है, जिसका रूप इतना सुंदर है,
उसकी लीलाएं कितनी मधुर हो, फिर लीला में प्रवेश होता है उसकी लीला। अब लीला में प्रवेश कौन कराए, लीला में प्रवेश हम

लीला में प्रवेश करने का मन हुआ कि उसकी लीलाएं कैसी, एक बार सुन। और श्री ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करी है, कि मैं ब्रज को छोड़ करके एक पल के लिए भी ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाता। आप कहोगे जी कि क्यों, फिर मथुरा कौन गया, द्वारका कौन गया? अजी, श्री कृष्ण का एक अंश चतुर्भुज होकर के द्वारका गया है। हमारे श्री कृष्ण आज भी ब्रज में ही विराजते हैं। बताओ, द्वारका वाले दो हाथ वाले हैं कि चार हाथ वाले हैं? चार हाथ वाले। श्री कृष्ण अभी भी वही है, वो तो एक अंश गया है केवल लीला के। तो मन हुआ

0: मन वृंदावन में पहुंचते ही सबसे पहले कब्जा श्री ठाकुर जी इस मन पर ही कर लेते हैं।
1: जय हो।
0: बस एक बार मन पहुंच जाए उस वृंदावन। लेकिन ये सब किसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है? केवल नाम की कृपा से। इसलिए हम सबको नाम का आश्रय लेना, बिना नाम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जी। अब पता नहीं सतयुग में हमने जन्म लिया था कि नहीं लिया था, त्रेता में हमने जन्म लिया था कि नहीं लिया था, द्वापर में हमने जन्म लिया था कि नहीं लिया था, हमें तो नहीं पता, आगे का भी नहीं पता। लेकिन वर्तमान का पता है, हम मनुष्य देह धारण करके कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी ने कलयुग में भी जन्म दे करके हम पर विशेष

अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्याओं से, यज्ञों से, हवन आदि से, पूजा आदि से भी भगवान की झांकी प्राप्त नहीं होती थी, भगवान का रूप प्राप्त नहीं होता था, लेकिन इस कली में केवल और केवल नाम की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कृपा नहीं तो और क्या। इसलिए मूल में नाम, जब जब नाम पुकारा जाए, जब जब नाम गाया जाए, चारों तरफ से हो सकता है कि भजनों के शब्द समझ में ना आए, लेकिन नाम तो सबको समझ में आएगा, क्योंकि मूल में कृपा नाम ही बरसाएगा। इसलिए जब जब नाम गाया जाए, दोनों भुजा उठा करके गाया करो।

कसूर है, ये मेरी तलाश का जुर्म है या मेरी वफा का कसूर है। जितना तू दिल के करीब है उतना नजरों से दूर है, उतना नजरों से दूर है।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम वन्दना प्रत्येक आइतबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रमका प्रायोजक
2: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
3: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास।
1: प्रत्येक दिन साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8

प्रत्येक सोमबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चारो हिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़ डाला। ले देख

प्रिय भक्तों, आज हम सांवरे के दीदार की बातें करेंगे। सांवरे का दीदार जिसको हो जाए वो खुद सांवरा हो जाता है, सांवरे की छवि उसमें आ जाती। तो आज हम सांवरे का दीदार करेंगे और अपने को सांवरे में ही विलीन करेंगे।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

आओ हो नहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान

0: मैं फुटी फुटी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो। मीना मीना जी।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।

0: पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: ಸೋಲ್ ಸುಚ್ಚೆ ಪಾಠ
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: बोली त्यहाँ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: अरे सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा। हाँ, अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

0: पाए। नेपाल टेलिकम को सहुलियत दर का पैकेज खरीद करना #1415# डायल गर्नुहोस्।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार।
2: FM is 104.8 megahertz.

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाए। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा चाहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए।

और कहा, हे तात, कृपा करके दूसरा धर्म नहीं है, मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें।

आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी।

राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं।

मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कोसल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं।

वीरों में अग्रगण्य तथा तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गंवाकर लौटता है। सुमंत्र ने रथ को हांका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर पीट पीट कर पछताते हैं।

अत्यंत कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी, अर्थात मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो।

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति
3: ए नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हे राम मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है मैं सब सच सच कहता हूं लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा

पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया।

0: निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ, अरे इसको तो कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा।
1: प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।

फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनह कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा।

0: मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला,
1: हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा।
0: उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले।

उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर है जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं।